0: देखो जून 12
1: अनुगानी तू एग
0: हाँ कद तू एग जिम्बे पाउना नुसिकर यंग निमन बाउ पर थे
2: Mix of Rock.